0: जी की इतनी क सेवा प्रवान करनी। ये जो प्रोग्राम है 95.1 FM ते एवरी थर्सडे 8 to 10 रात भी सुनिया जा सकता है। इसका फेसबुक पेज है 2MOIA बॉबी पंजाबी टॉक शो। अगले हफ्ते फिर दास हाजिर होगा। अंटल रब राखा।
1: सो दोस्तों इस नाल आपां इत्थे लाइव वीडियो एंड करते हैं। आपां मिलते हैं थानू अगले हफ्ते एक होर फेसबुक लाइव ते। सत श्री अकाल। सो आपां हुण शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट सैगमेंट। सो पहला सोंग जो चलाना बरोटा, ये सिद्धू मूसेवाले का सोंग, इंजॉय करो। तो उस तो बाद जिदा रिक्वेस्ट आओगे आप सोंग प्ले करांगे। पहला सोंग बरोटा।